0: नमस्कार दोस्तों, लोक के डायलेक्ट न्यूज के बाद फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। दिन चाहे जैसा भी हो, मुस्कुराने की एक वजह जरूर रखिए, क्योंकि आपकी मुस्कान किसी और का दिन और भी बेहतर बना सकती है। चलो श्रोता, मनोरंजन के सिलसिले को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं और लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव की ओर।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Pace Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0 litre dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा। लेकर आते हैं हर शाम 6 बजे इवनिंग ड्राइव।

श्रोता कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का पहला गीत आपने सुना अमित त्रिवेदी की आवाज में केदारनाथ फिल्म से। बता दो आपको कि आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बता दो आपको कि अगला गीत, इस गीत के तुरंत बाद आप आनंद ले पाएंगे अगला गीत का, कोड नेम तिरंगा फिल्म से।

हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल, जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।

0: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा गुड्डू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

तो श्रोता, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का, और इसी के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन हाँ, निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्यक्रम शाम की महफिल। तो चलिए फटाफट रुक करते हैं कार्यक्रम शाम की महफिल की ओर।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए. कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे. नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे. वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए. फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे. नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे. अपनी सुरक्षा अपने हाथ. सावधान रहे और सुरक्षित रहे. सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी. धन्यवाद.

0: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5,00,000 रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ, 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और?
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है।

0: श्रोता दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम शाम की महफिल यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी आरजे मंजू पामो। लेकिन मनोरंजन का सिलसिला तो रुकने वाला है ही नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लिए चलते हैं आपको कुछ और हिंदी फिल्मी गीतों की ओर।
1: बंधु नई कार जीतने का मौका, वाओ पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना,
4: रिलैक्स।
1: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो
4: कूल रहो।
5: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

तो दोस्तों, हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। जी हाँ, रेडियो की खूबसूरती यही होती है कि आवाज हमारी होती है लेकिन पसंद आपका, आपके ख्याल का रखा जाता है। तो पहला गीत हमने पेश किया है आपके लिए क्योंकि फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ,
4: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले?
4: ना,
3: पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और?
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़िया,
3: जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: साथी मेरे सुन तो जरा।
8: हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलो। तुम चुप क्यों हो गए? बोलो बोलो ना।

0: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound? Yes. Advanced Level 2 ADAS? Yes. Smart powered tailgate with gesture control? Yes. 5-star safety rating? Yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just Rs 10.49 lakh.
1: And benefits up to Rs 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: Bandhu, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी. बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है.
3: रुक जा बुद्धू.
4: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो. स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं.
2: तो समझ गई ना. रिलैक्स.
5: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते.
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल.

0: नमस्कार श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से आदि डायरेक्ट न्यूज। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 MHz पर। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और आनंद लेते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार का।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km/L. Smart Pay Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K series 1.0 L dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम आज के कलाकार में। हमेशा की तरह मजेदार बातों के साथ साथ कुछ मजेदार गीत भी लेकर आई हूँ इस कार्यक्रम में आप सभी के लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार के बारे में जिन्हें आप सभी जग्गू दादा कहकर पुकारते हैं। तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज हम बातें करने वाले हैं जैकी श्रॉफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैकी श्रॉफ, जिनका असली नाम जय किशन काकू भाई श्रॉफ है, भारतीय हिंदी फिल्मी जगत के एक बहुत ही जाने माने अदाकारा। उन्होंने 1980s में हिंदी फिल्मी जगत में एंट्री किया और अपनी फिल्म हीरो जिसका रिलीज हुआ 1983 को, और इस फिल्म से उन्होंने सुपरस्टार दम हासिल किया और यही उनकी बॉलीवुड में सबसे पहली सुपरहिट फिल्म रही। उनके अभिनय की विविधता, दमदार आवाज और स्टाइलिश अंदाज ने उन्हें बॉलीवुड में एक अलग पहचान दिलाई। उन्होंने 220 से अधिक फिल्मों में काम किया जिनमें उन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली, कन्नड़, मराठी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में फिल्में की। जैकी श्रॉफ का जन्म 1 फरवरी 1957 को मुंबई में हुआ। वो एक बहुत ही विनम्र किस्म के इंसान हैं और अभिनय में आने से पहले उन्होंने बस कंडक्टर और शेफ जैसी काम भी उन्होंने किया। उन्होंने राम लखन, त्रिदेव, कर्मा, परिंदा और देवदास जैसे सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उनकी पत्नी आशा

श्रॉफ एक फिल्म निर्माता है और उनके बेटे टाइगर श्रॉफ और बेटी कृष्णा श्रॉफ है। जेकी श्रॉफ यानी कि आप सभी के पसंदीदा कलाकार जग्गू दादा के बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे आज इस कार्यक्रम के दौरान। फिलहाल चलिए आनंद देते हैं हीरो फिल्म के इस गीत का।

दोस्तों, अभी अभी आपने आनंद लिया इस गीत का हीरो फिल्म से, जो जैकी श्रॉफ की सबसे पहली सुपरहिट मूवी थी। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं 100 डेज के बारे में। जी हाँ, जैकी श्रॉफ को इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। जैकी श्रॉफ ने साल 1991 में आई मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म 100 डेज में राम कुमार नाम के एक अमीर मिलेनियर का मुख्य किरदार उन्होंने निभाया और इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया। फिल्म में राम कुमार की मुलाकात देवी यानी कि माधुरी दीक्षित से होती है, और जो कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन यानी कि भविष्य की घटनाओं को पहले ही भापने की छठी इंद्रिय शक्ति से पीड़ित होती है। और इसके बाद दोस्तों बता दूं कि फिल्म की कहानी में राम कुमार का किरदार काफी रहस्यमय होता है, जिसके व्यवहार और गतिविधियों से दर्शकों के मन में उसके नेगेटिव होने का संदेह भी पैदा हो जाता है, जो फिल्म के क्लाइमैक्स और सस्पेंस और रोमांच को और भी बढ़ा देता है। यह फिल्म 1984 की तमिल फिल्म नुरुवथु नाल का

रीमेक थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी सुपरहिट सुपरहिट थ्रिलर साबित हुई थी। दोस्तों उसी तरह से जब ये फिल्म दोबारा बनी यानी कि 100 डेज बनी जिसमें माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ ने काम किया, उन्हें भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। चलिए इसी फिल्म के इस गीत का आनंद लेते हैं इस बार।

दोस्तों, आपने आनंद लिया इस गीत का 100 डेज फिल्म से। आइए इस बार बातें करते हैं एक और बहुत ही बड़ी सुपरहिट मूवी फिल्म जिसमें जेकी श्रॉफ के किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया। इस बार चलिए बात करते हैं फिल्म राम लखन के बारे में। जी हाँ, राम लखन फिल्म 1989 को रिलीज हुई और इस फिल्म को सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में जेकी श्रॉफ और अनिल कपूर की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया। निर्माता निर्देशक सुभाष घई की सुपरहिट फिल्म राम लखन रिलीज हुई 27 फरवरी 1989 को और इस फिल्म को आज भी दर्शक बहुत ही खास मानते हैं, जिसमें जेकी श्रॉफ और अनिल कपूर की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। सुभाष घई ने एक इंटरव्यू में बताया कि आमतौर पर वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट पर काफी समय लेते हैं, लेकिन इस फिल्म को उन्होंने केवल 15 दिनों में ही लिख दी थी। और इस फिल्म, ये एक फैमिली फिल्म है राम लखन, जिसमें दो भाइयों की कहानी है, राम और लखन। राम जेकी श्रॉफ और लखन यानी कि अनिल कपूर। दोस्तों, यह फिल्म उस समय की दूसरी सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म रही और यह फिल्म राम लखन आज भी बहुत लोगों के बीच पॉपुलर है। जब भी ये फिल्म आते हैं, फिल्म की देखने की बारी आती है, लोग कभी पीछे नहीं हटते। चलिए इसी बात पर आनंद लेते हैं इस गीत का राम लखन मूवी से।

दोस्तों राम लखन फिल्म के इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम आज के कलाकार का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और कुछ और मजेदार गीत एक और नए

कलाकार के साथ। फिलहाल बता दूं आपको कि आपसे थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से निशी डायलेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक निशी डायलेक्ट न्यूज के बाद।

0: निशी डायलेक्ट न्यूज के बाद स्वागत है श्रोता आप सभी का एक बार फिर से अरुण एफएम प्रसारण सभा में। तो चलिए जारी रखते हैं मनोरंजन के इस सिलसिले को, लिए चलते हैं आपको कुछ और हिंदी फिल्मी गीतों की ओर।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

दोस्तों बताना चाहेंगे आपको कि बर्फी फिल्म के गीत के बाद इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं इस गीत का पापोन की आवाज में। और बता दूं आपको कि आप आनंद ले रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का हमारे साथ अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और?
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
1: जाओ भाई।
3: RBI कहता है।

हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल, जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5,00,000 रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और?
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
1: जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है वित्तीय

ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। इसी के साथ ही बताना चाहेंगे आपको कि अब से बस कुछ ही पलों में आप आनंद ले पाएंगे आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश का।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार नमस्कार। मैं असम से बात कर रहा हूँ, सुतपा भट्टाचार्या।
0: हाँ सुतपा जी, आपने केमन?
1: हाँ भलो आछी, आपने केमन?
0: हाँ आमी हूँ खूब भलो। आपके वहाँ मौसम कैसा है, बारिश है या फिर धूप है?
1: बारिश नहीं हुआ, धूप उठा।
0: अच्छा धूप उठा है ना, ओके।
1: तो
0: जी, तो सुतपा जी, आज कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: ये गाना सुना दीजिए, फिल्म का नाम क्यामत।
0: क्यामत,
1: इंतजार नहीं करना।
0: ओके जी, हाँ जरूर सुनाएंगे
1: ये गाना सुना दीजिए।
0: हाँ जी जी, जरूर सुनाएंगे। और किन
1: डेडिकेट करते हैं, पहले तो आपके लिए।
0: थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: प्रमोदी चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती, अविनाश केली, मनोज कुमार भट्टाचार्य, लुकेंद्र वर्मा, श्रीकांत जोशी, पुरुषोत्तम कुमार, विजय सिंह लकड़ा, सबको, अमर सिंह साहू, सबके लिए।
0: ओके, पीछे से अनूप दा बोल रहे हैं ना नाम। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सुतपादी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं। ओके धन्यवाद। इसी गीत की फरमाइश हमारे एक और श्रोता ने की है, पहले आइए इनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश।
2: हेलो नमस्ते सर।
0: नमस्ते, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: मैं कश्मीर सोना मरग से लतीफ अहमद रैना।
0: जी लतीफ अहमद रैना जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुछ दिनों के बाद कॉल किया।
2: हाँ जी, मैंने आज बहुत दिनों के बाद कॉल किया ईटानगर।

0: मैं
1: जी
0: बहुत खुश हूँ, मैं मेरे को कॉल वहाँ पे लगता है।
1: जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी बहुत खुशी होती है जब देश के इतने दूर दराज के इलाकों से लोग कॉल करते हैं हमें।
0: हाँ जी, हमें भी बहुत खुशी लगता है आपसे बात करने में। यहाँ भी मौसम भी आजकल सुहाना है।
1: अच्छा,
0: यात्रा भी कम कम अभी चलता है यहाँ हमारे जिले में।
1: अच्छा जी जी
0: आजकल यहाँ पर यात्रा हमारे जिले गांधरबल है ना सर,
1: जी जी जी
0: यहाँ पे यात्रा अभी कम कम चलता है। रक्षाबंधन के दिन को खत्म हो जाएगा ये यात्रा।
1: अच्छा, जी।
0: हाँ
1: अभी
0: जी, हाँ जी,
1: अभी मौसम बहुत ही बढ़िया है, सुहाना।
0: 50-60-70 तक तो यात्रा हमारे जिले में आते,
1: अच्छा जी
0: इससे
1: जी
0: पहले हम में आते थे। हाँ
1: ओके जी।
0: जी, हाँ जी,
1: ओके, तो इस कार्यक्रम के जरिए आपने अपने इलाके के बारे में जानकारी दी हमें, तो इसके लिए
0: हाँ
1: बहुत बहुत
0: जी,
1: धन्यवाद। तो हम यही उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता सुनकर जरूर वहाँ पे घूमने जाएंगे।
0: हाँ यहाँ पे आज पर्यटक भी बहुत सारे कम आते हैं। जब भी यहाँ यात्रा सीजन तो चालू हो जाते हैं तब पर्यटक तो कम हो जाते हैं।
1: अच्छा।
0: अंग्रेज लोग तो घूमते हैं वहाँ मोटे इलाकों में, विंटर में यहाँ है ना,
1: जी,
0: वहाँ पे घूमते हैं जहाँ ऊंची ऊंची जगहों पे। हाँ
1: अच्छा ओके। तो ठंडी के मौसम में
0: जी,
1: आपके वहाँ बर्फ पड़ती है?
0: यहाँ पर तो सर इतना बर्फ पड़ता है लगभग 3 फुट 4 फुट, इससे पहले 6 फुट 7 फुट पड़ता था बर्फ। अब तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कम बर्फ पड़ता है, 3 फुट 2.5 फुट इतना बर्फ पड़ता है सर।
1: अच्छा, तो
0: हाँ
1: बर्फबारी तो
0: सर,
1: हमने कभी देखी नहीं, मौका लगे तो हम भी जरूर आएंगे घूमने के लिए।
0: भी आए सर,
1: जी
0: लगभग बर्फ तो पड़ता है जनवरी या
1: अच्छा
0: फरवरी ऐसा मौसम में आना चाहिए यहाँ पे कश्मीर, ऐसा बर्फ आता है
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: जी।
1: जब बर्फ शुरू हो जाए आप जरूर खबर कीजिएगा इस कार्यक्रम के जरिए।
0: इस खबर के जरिए, इसी प्रोग्राम के जरिए मैं आपके तक ये खबर पहुंचाऊंगा यहाँ पे बर्फ तो गिरा है।
1: ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हाँ
1: तो
0: जी,
1: जी, तो लतीफ जी, काफी अच्छी जानकारी दी आपने हमें। तो अब कहिए आप कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
0: फिल्म का नाम है हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना,
1: अच्छा जी, जरूर सुनाएंगे।
0: ये वाला गाना। और हमारे साथ कुछ होता लोग है,
1: हाँ जी जरूर।
0: रमेश प्रजापति टेलर मास्टर, और भगवान सिंह परमा, लोकेंद्र वर्मा, और गजराज लोधी, राकेश कुमार, और आप सुनेगा सर।
1: जी, मैं भी जरूर सुनूंगा आपके साथ। तो लतीफ
0: कभी
1: जी,
0: आइए कश्मीर सर, कभी आइए कश्मीर, मैं आपको यहाँ पे घुमाता हूँ। सोनामर्ग,
1: जी
0: गुलमर्ग, पहलगाम, हर जिले यहाँ मैं आपको घुमाऊंगा सर।
1: जी, जरूर आऊंगा, और आने से पहले मैं आपको जरूर इत्तला करूंगा कि हम आएंगे, तो फिर आपसे
0: हाँ
1: वहां पे
0: सर, हाँ
1: मुलाकात होगी। तो लतीफ जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
0: आपका भी धन्यवाद।
1: ओके।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर
1: जी। नमस्ते, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बचोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी प्रेम सिंह सिसोदिया जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कहिए कैसे हो आप?
1: जी थैंक यू सो मच आपको भी कॉल उठाने के लिए, और मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हो?
0: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ, और जब भी आपका फोन आएगा मैं जरूर उठाऊंगा
1: जी। और ईटानगर कार्यक्रम हम मोबाइल ऐप पर सुनते हैं
0: जी,
1: और मोबाइल ऐप के जरिए हमें कार्यक्रम की जानकारी भी मिलती है। हमारा ग्रुप बना हुआ है हेलो फरमाइश रेडिया एकता ग्रुप।
0: जी जी जी हाँ जी।
1: उसके सबसे बड़े मेंबर है हमारे गौतम राय बोले सर और लोकेंद्र वर्मा जी उज्जैन से।
0: ओके जी।
1: और हमारे दोस्त लोकेंद्र जी है ना, उनका हमने नाम रखा हुआ है कैप्टन।
0: कैप्टन क्या बात है, कैप्टन को हमारी ओर से सलाम।
1: जी कैप्टन को सलाम, इसलिए क्योंकि वो हमेशा कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हैं, कहीं से भी कैसे भी कार्यक्रम को खंगाल के निकाल लेते हैं। पिछले से पिछले अगर रिकॉर्डिंग अगर उनसे अगर चाहते हैं ना हम, तो वो हमें निकाल के दे देते हैं।
0: अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, सही में कैप्टन वाली काम कर रहे हैं लोकेंद्र जी।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो हमने उनका नाम कैप्टन रखा है। और किसी भी आकाशवाणी में अगर जुड़ना हो ना, तो एक बार लोकेंद्र जी से संपर्क करें, वो आपको जरूर वहाँ पे जुड़ा देंगे।
0: क्या बात है, क्या बात है, हमारी ओर से लोकेंद्र साहब को बहुत बहुत

0: धन्यवाद जी। तो यही बेहतर
1: है। आपको बताऊं अभी मौसम काफी अच्छा है यहाँ पर।
0: अच्छा जी जी
1: जी, पिछले हफ्ते काफी अच्छी बारिश हुई थी और अभी सोयाबीन की फसल लगा रखी है सभी किसानों ने।
0: अच्छा जी
1: हाँ जी, तो और थोड़ा बरसात का इंतजार हो रहा है, जितना अगर पानी ज्यादा गिरेगा ना फसलों के लिए उतना अच्छा फायदा रहेगा।
0: जी जी जी, फसलों के लिए तो पानी बहुत ही जरूरी है जी। ओके, तो चलिए यही आशा करते हैं जल्दी बारिश हो और आपकी फसल अच्छी हो। तो इसी आशा के साथ आप कहिए कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे।
1: जी, फिल्म का नाम है हाँ मैंने भी प्यार किया है और गाने के बोले हम यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे। हम तो आकाशवाणी के यार है, हमेशा आकाशवाणी सुनते रहेंगे
0: जी।
1: और अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ में आकाशवाणी में कॉल करते रहेंगे
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से हमसे जुड़ते रहिए। और किन साथियों को आप सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: जी, गाना डेडिकेट रहेगा कैप्टन सर को रहेगा, गौतम राय बोले को रहेगा, भगवान सिंह परमार, आशुतोष अविनाश, संगीता जी, बाइकोन मुंडा का कॉल अभी आया है उनके लिए रहेगा और हाँ हमारे ग्रुप के सभी मेंबर के लिए।
0: ओके, तो प्रेम सिंह जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो हेलो फरमाइश।
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर।
1: जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम,
0: जी
1: राधे राधे।
0: जी अनुपदा।
1: जी, आपने सही पहचान लिया।
0: जी, आपके भारी
1: और
0: भरकम आवाज को तो मैं हमेशा पहचानता ही हूँ।
1: जी, मैं अनुप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट है श्रीभूमि, आसाम से तालुकात से।
0: जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुप जी।
1: जी, और उम्मीद करते हैं हमारे दोस्त बके बागेरा जी बहुत अच्छी है ना?
0: जी बिल्कुल, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ।
1: तो दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है हमारी, तब चाहे जैसे भी हो खुलेआम बोलते है ना?
0: जी क्या बात है।
1: जी आज एक गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ।
0: जी, जी, जी
1: का नाम है सिर्फ तुम।
0: सिर्फ तुम। ओके।
1: सिर्फ तुम, और गाने का बोल ऐसे है। पंछी सुर में गाते हैं, भौरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है, यूफी जा बुलाती है, ऐसे हो ये मेरे दिल रुबा, ऐसे करके गाने।
0: जी बहुत ही प्यारा गीत आपने चुना है अनुप जी।
1: जी, आपने सही बोला।
0: हाँ जी।
1: और क्या हुआ, हमारे धर्मपत्नी ने क्या होता है वो आपके स्टेशन पे फोन करने के लिए इतना बेचैन हो जाते हैं।
0: अच्छा।
1: पहले से गाना लिखते हैं और ऐसे वो बोके बागरे जी से वो साझा करेंगे। वो
0: अच्छा।
1: मन में एक बहुत अच्छी एक इरादा होता है आपसे बात करने का और ईटानगर स्टेशन में बात करने का। वो आपका भाभी जी क्या बता रहे थे, आपका लग जाएगा।
0: ओके। अच्छा,
1: लेकिन आखिरकार लग गया, बातचीत हो रहा है।
0: जी। हाँ जी।
1: और कुछ दोस्तों को मेरे दोस्त डेडिकेट कर।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी।
1: पहले है आप जैसे मेरे दोस्त है, और सेकेंड है हमारे नूरी मैम के लिए, और है विजय सिंह लखेरा जी, बसंतीलाल सूर्यवंशी जी, पुरुषोत्तम कुमार जी फ्रॉम कश्मीर, और लुकेंद्र वर्मा जी फ्रॉम उज्जैन मध्य प्रदेश, श्रीकांत जोशी जी, अमर सिंह साहू जी, और है प्रेमजी चक्रवर्ती जी, है अविनाश तेली जी त्रिपुरा से, और ढेर सारे श्रोताओं भी सुन रहे हैं सबके लिए, और देवजीत दास। देवजीत दास के लिए तो चलिए मेरे दोस्त बातचीत को यही पे खत्म करता हूँ। बहरहाल आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू
0: कॉल करने के लिए, बहुत बहुत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: सर जी, हम भी आपका बहुत स्वागत करते हैं हमारे यहाँ पंजाब में।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब के शेयर कराने के लिए, आप फिर से आ गए हमारे साथ। जी
1: बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगजीत राय गर्ग बोल रहा हूँ।
0: जी जगजीत राय जी, बहुत बढ़िया कॉल किया आपने, और कैसे हो आप?
1: बहुत आनंद में है जी, मजे में है। अब आप बात हो रही है तो और भी आनंदित हो गए।
0: क्या बात है। जी जी जी, और मौसम कैसा है आपके वहाँ?
1: मौसम सर, पिछले दिनों थोड़ी सी बरसात हुई थी तो मौसम ठीक हो गया था, और अब फिर कई दिनों से बरसात नहीं हुई तो दोबारा फिर गर्म होना शुरू हो गया।
0: अच्छा, तो अभी धूप खिला हुआ है?
1: हाँ, आज धूप है जी और गर्मी भी है।
0: ओके जी जी जी जी, हमारे यहाँ तो बादल छाया हुआ है, बारिश हुई नहीं है हमारे यहाँ पे भी।
1: तो हमारे यहाँ अगर हुई तो हम आधी आपको भेज देंगे।
0: क्या बात है, क्या बात है। और अगर हमारे यहाँ पहले हुई तो हम भी आपके वहाँ थोड़ी भेज देंगे।
1: बिल्कुल सर, अगर बांट के कोई भी चीज बांट ली जाए तो कितनी खुशी होती
0: जी
1: है।
0: जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो जगजीत जी, आज कौन सा फिल्म का गाना हम आपको सुनाएं?
1: सर आज एक थोड़ा सा संजीदा सा गीत है, पर मेरे जुबान पे बस वही आ रहा है बार बार।
0: अच्छा जी,
1: फिल्म है विश्वास, तो मुकेश जी की आवाज में गीत है, थोड़ा सा मैं गुनगुना के बताना।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी।
1: चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार।

0: क्या बात है, आज सुबह सुबह किसने हमारे दोस्त का दिल तोड़ दिया।
1: दिल तो नहीं टूटा सर, बस
0: जी
1: ऐसे कुछ गीत है, संजीदा गीत कुछ ऐसे होते हैं
0: जी जी जी जी बार बार
1: उनको
0: सुना।
1: पता नहीं, संजीदा गीत होने के बावजूद भी कुछ मन खुश हो जाता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, बार बार सुनने को जी करता है।
1: जी
0: जी
1: करता
0: जी
1: है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: ऐसे ही ये गीत था,
0: ओके
1: दिल तो

0: का भी ना टूटे।
1: जी बिल्कुल। और किन साथियों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
0: सर जी मेरे मित्र हैं गौतम राय बोले जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, जोगेश जांगड़े जी हैं, उदयलाल टेलर जी हैं, रामलाल यादव जी हैं, धीरज वीर रवारी हैं, गंगा सिंह रावत जी नैनीताल उत्तराखंड से हैं, ईश मिगलानी जी मलोट पंजाब से हैं, बाबू सिंह धीमान जी मुक्तसर पंजाब।
1: ओके, इन सभी साथियों के साथ आप सुनना चाहते हैं इस गीत को?
0: जी सर।
1: तो जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
0: धन्यवाद।

0: हेलो, फरमाइश।
1: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासरा कॉलेज जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी इंद्रभान सिंह जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे हो आप?
1: ठीक है सर, आप भी अच्छे, मैं भी अच्छा हूँ। सर जानते हैं, मैं 3 हफ्ता से आपके केंद्र में फोन लगा रहा था, लग नहीं रहा था सर।
0: अच्छा,
1: 4th हफ्ता हुआ, पता नहीं नेटवर्क का घर का गड़बड़ है कि क्या है,
0: जी जी
1: लगा रहा हूँ तो सर एकदम धीरे धीरे जा रहा है सर जी।
0: अच्छा,
1: व्यस्त है तो पता नहीं क्या होता है सर।
0: ओके,
1: चाहता हूँ कि ईटानगर का नेटवर्क बढ़िया मिले सर हमको, फोन तुरंत लगे सर।
0: जी जी जी,
1: हो जाता है।
0: हाँ जी, हाँ जी, नहीं मैं देखता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसे जरूर सुलझाने की कोशिश करूंगा। जी जी, आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी सर, और आज मैं सबसे पहले आपको रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, तीजा, गणेश चतुर्थी के आगामी त्योहार आने वाला, सबका ढेर ढेर हार्दिक शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी ओर से भी आपको और आपके सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आज मैं दिशा मूर्ति मंडल के साथ अपने पसंद के गीत बताता हूँ सर। फिल्म राखी से संबंधित फिल्म का नाम है अंतर, पुराना पिक्चर है।
0: ओके,
1: और गाना है रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, गायिका लता मंगेशकर। सबसे पहले गीत आपको केंद्र निर्देशक साहब को, पूरे भारत राज्यों को, आकाशवाणी ईटानगर में थोड़े सभी लोगों, आपके दुर्गाजन के रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, और सभी उद्घोषक भाई बहनों को, स्टाफ कर्मचारियों को, हाल एक्टर गीत के जुड़े श्रोताओं को, पूरे भारत राज्य श्रोताओं की डिटेल रहा हूँ सर
0: जी।
1: इसका प्रसारण सर ये मंगल को है ना सर?
0: हाँ जी, मंगलवार को रात को 7:35 पर अरुण एफएम में, और मीडियम वेब पेज 8:00।
1: शनिवार को 1:10।
0: जी जी, हाँ जी,
1: ठीक है सर, जरूर सुना दीजिएगा सर।
0: जी जरूर जरूर। ओके, कॉल करने के लिए बहुत बहुत

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश
0: जी। नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी सर नमस्ते। जिला विदिशा, तहसील लटेरी, ग्राम मोहब्बतपुर से रवि केवड़ बात कर रहा हूँ सर।
0: जी रवि केवट जी, काफी दिनों के बाद आपने हमें याद किया।
1: जी बिल्कुल सर
0: जी। और सुनाइए कैसे हो आप?
1: बस सर बढ़िया है। और इस वक्त तो बारिश तो होने रही सर, धूप निकल रही है काफी तेज।
0: अच्छा जी जी जी
1: जी बिल्कुल सर।
0: ओके, अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी बिल्कुल, अभी मैं कॉल इंदौर से कर रहा हूँ।
0: अच्छा, इंदौर से कॉल कर रहे हैं आप?
1: हाँ सर।
0: ओके, और ड्यूटी चल रही है?
1: हाँ बिल्कुल, और ड्यूटी पे से कॉल कर रहा हूँ सर।
0: अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। तो कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: आज सर करण अर्जुन का सुना देना सर गाना।
0: करण अर्जुन का कौन सा गाना?
1: इसका वो है ना, बंधन तो प्यार का बंधन।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी, हाँ जी जरूर सुनाइए।
1: और ये राकेश से उपलक्ष में रहेगा गाना।
0: जी जी जी बिल्कुल। और किन साथियों को सुनाना चाहेंगे?
1: पहले नंबर सर आपके लिए
0: धन्यवाद।
1: जिसके बाद दोस्त है हमारे प्रदीप साहू जी है, नरेश प्रजापति जी है, गजराज लोधी जी है, मांगीलाल चंदेल जी है, उदिता विश्वकर्मा जी, सुचिता विश्वकर्मा जी, संतोष राव जी, भारती राव जी, और जिसके बाद है भानु महफिल और सेवा भाई।
0: ओके,
1: और जितने श्रोता सुनेंगे उन सभी के लिए,
0: सभी को आप सुनाना चाहते हैं। और पीछे से कोई आपका दोस्त गाना गा रहा था, बंधन है प्यार।
1: जी सर बिल्कुल, गाना गा रहा था बिल्कुल।
0: जी जी जी बिल्कुल, अच्छा लगा सुन के। तो रवि जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।

यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो चलिए श्रोता, इस बार आपको लिए चलते हैं हिंदी फिल्मी गीतों की ओर। आइए आनंद लेते हैं हिंदी फिल्मी गीतों का।

हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।

0: बन गया बजट?
1: हाँ
0: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
0: ना, पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और
0: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
0: जाओ भाई।
2: RBI कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: श्रोता, इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। चलिए श्रोता, अब समय हो चला है कुछ पाश्चात्य संगीतों का। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज का।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ, 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और?
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: That is all for today, listeners. I hope you all enjoyed the songs today and that you'll catch us back tomorrow only on Akashvani Itanagar. This was your host Sam, signing off for the day. Goodbye.
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले?
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और?
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: आरबीआई कहता है।

0: श्रोता, अभी आप आनंद ले रहे थे पाश्चात्य संगीतों पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज का। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, पाश्चात्य संगीतों के बाद अब समय हो गया है कुछ पुराने हिंदी फिल्मी गीतों का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत का।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

श्रोता, स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम भूले बिशरे गीत में। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। ऐसे ही खूबसूरत गीतों का माला लेकर आई हूँ आपके लिए इस कार्यक्रम में। दोस्तों, पहला गीत आपने आनंद लिया, पहला गीत आपने सुना तलत अजीज की आवाज में, और लीजिए दोस्तों आनंद लीजिए अब इस अगले गीत का।

0: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5,00,000 रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ, 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

बताना चाहेंगे आपको कि इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं इस गीत का सरस्वती चंद्र फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
1: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pay Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
6: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

0: Mannheim.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए सूखे से निपटने के लिए भारत के दृष्टिकोण और विभिन्न प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: आनंद शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: आनंद जी। अगर हम सूखे की बात करते हैं तो इसे हर बार की आने वाली आपदा को मानकर राहत देने के बजाय एक ऐसे जोखिम के रूप में देखें जिसके पहले से तैयारी की जा सकती है, तो हमारी रणनीति में किस तरह से बदलाव आना आवश्यक है और भारत इस सोच को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहा है?
3: जितने भी हमारे जिसे कहते हैं जोखिम है, चाहे वो बाढ़ हो, अत्यधिक बारिश हो या फिर कम बारिश, सूखा, तो ये सूखा एक तरह का जोखिम है। और हम ये देखें तो ये अक्सर हमारे यहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रदेश में मॉनसून सीजन में देखने को मिलता है, या सूखा हो या फिर एक लॉन्ग ड्राई स्पेल, यानी जब कभी लंबे समय से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते बारिश ना हो, तो वो उस फॉर्म में देखने को मिलता है। और यदि उसकी तैयारी हो तो हम उसको झेल सकते हैं। तो इसीलिए जो है ओवर द ईयर्स तैयारी ये की गई है कि हम जो है, पहले होता क्या था कि वर्षा की फोरकास्ट शायद अच्छी नहीं थी या फिर किसान को पता नहीं चलता था और पता चला सूखा हुआ आया और उनकी फसल खराब हो गई। पर अब ऐसा नहीं है। अब क्या एक पूरा तंत्र बना हुआ है, रेनफॉल की मॉनिटरिंग हो रही है और समय समय में उसका पूर्वानुमान दिया जा रहा है। और पूर्वानुमान दिया लगा है कि जैसे कि इस बार एलनीनो है तो मॉनसून की वर्षा सामान्य से कम होगी 10%, जैसा मौसम विभाग ने कह दिया। अब एग्रीकल्चर मिनिस्टर को मालूम है कि वर्षा कम होने वाली है इस समय और कौन से क्षेत्र हैं जिनमें वर्षा डिलेड है, देर से ऑनसेट होगा मानसून में, तो वहां पे किस तरह की फसल लगेगी, किस तरह की तैयारी होगी। तो यदि आपकी तैयारी है, प्रिपेयर्डनेस फोकस जो है, जो हमारा नया सिस्टम है उसमें प्रिपेयर्डनेस पे फोकस है पहला। दूसरा फोकस है न्यूनीकरण पे, मिटिगेशन पे, कोई भी जोखिम है उसको न्यूनीकरण करना, उसको कम करना। और तीसरा है आपका अर्ली वार्निंग तो है ही प्रिपेयर्डनेस में, और साथ में सिस्टम को रेजिलियंट बनाना है। और इसमें हमारा जो इंडिया है उसमें हमने कर सूखे के ऊपर ड्राउट मैनुअल बनी है, बहुत अच्छी मैनुअल, और एक एसओपी बनी है किस तरह से कि जैसे ही मॉनसून शुरू होता है तो किन पैरामीटर्स को हमने फॉलो करना है। और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप है जो मिनिस्ट्री में बना हुआ है, जहाँ के सारे एक्सपर्ट मिलते हैं और स्टेट के ऑफिशियल्स भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहते हैं, तो उनको हर हफ्ते बताया जाता है कि बारिश अब कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो उससे तैयारी रहती है। और ये तैयारी जो है हम बाकी लोगों से भी शेयर कर सकते हैं।
2: आनंद जी, आज सूखे का जो असर है सिर्फ पानी की कमी तक सीमित नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा पर उसका असर पड़ता है, खेती, जैव विविधता, अर्थव्यवस्था, आपने भी वो बात कही है। तो आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में सूखा दुनिया के सामने है, सिर्फ हमारी बात नहीं पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी विकास चुनौती बन सकता है या बन चुका है?
3: देखिए, सूखा तो हर समय से हमारे लिए चैलेंज रहा है, पर हमने उस चुनौती को काफी हद तक टैकल कर लिया है। यानी कि हमने इरिगेशन को भी बढ़ावा दिया है, हालांकि और इरिगेशन जो हमारे को यदि हम सुधार कर लेते हैं। सबसे बड़ी है कि ज्यादातर किसान जो है हमारे जो सिंचाई पे निर्भर है, सिंचाई है उनके पास, तो उनके यहाँ कोई समस्या नहीं है। आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, इवन राजस्थान का कुछ हिस्सा, जब से इरिगेशन उनके पास है तो बारिश कम भी हो जाए तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हाँ, बहुत एक बड़ा हिस्सा है जो कहते हैं वर्षा आधारित खेती करते हैं, जहाँ पे रेनफेड एग्रीकल्चर होता है, वहां पे सरकारों को इरिगेशन पहुंचाने की जरूरत है। एक दूसरा, वहां पर किस तरह की फसलें लगाए जाएं, क्रॉपिंग पैटर्न अकॉर्डिंग टू द एग्रो क्लाइमेट। और तीसरा जो है वहां पर लाइफ सेविंग इरिगेशन, जैसे कि आप देखेंगे सदर्न इंडिया में पहले पॉन्ड इरिगेशन बड़ा कॉमन था, हर जगह तरह तरह के पॉन्ड होते थे, तो हमारे एक सिस्टम था कि कैसे तालाब बनाए जाते थे और उनको रखरखाव किया जाता था और उनसे ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था और खेती के लिए भी पानी लिया जाता था। तो आज पॉन्ड्स को रिवाइव करने की जरूरत है, उन नदियों को रिवाइव करने, तो जो हमारी पुरानी नदी है उनको रिस्टोर करना है, तालाबों को रिस्टोर करना है। तो ये यदि हम सब चीजें करते हैं और एग्रो क्लाइमेट आधारित खेती करते हैं और समय समय जो मौसम विभाग मौसम आधारित कृषि सलाह देता है वो किसानों तक पहुंचाते हैं, तो ये हम सारी चीजों को चुनौती रहेगी, मगर हम टैकल कर रहे हैं
2: बिल्कुल
3: और अच्छे से कर रहे हैं। और जैसे जैसे तकनीक और बढ़ती जाएगी हम और अच्छा करेंगे।
2: आनंद जी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा ये है कि अब हमारा लक्ष्य राहत के बाद प्रतिक्रिया नहीं बल्कि तैयारी और रोकथाम होना चाहिए। तो आपके हिसाब से हमारे देश की अगर हम बात करते हैं तो इस बदलाव को जमीनी स्तर पर लागू करना कितना आवश्यक है, क्या क्या इसके लिए हमें चीजें चाहिए और कैसे कोशिश की जाती है, और इसमें भी अगर कोई चुनौती है तो कैसी है?
3: देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, मैंने भी उनके पढ़ रहा था स्पीच का, तो बहुत अच्छे पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं उसमें। सही सीधी सी बात यह है कि देखिए, आपके पास तैयारी अच्छी है, तो सबसे बढ़िया बात है। पहले क्या होता था, रिलीफ पे जोर होता था, रिएक्शन करते थे, रिएक्टिव था, अब हम हो गए प्रोएक्टिव, यानी कि पूरा फोकस है प्रिपेयर्डनेस पे। प्रिपेयर्डनेस वो मौसम विभाग से चालू हो गई है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को पता है कौन से बीज लगाने हैं। तो जब सारी तैयारी आपकी है, आपने समय समय ये भी बता दिया कि अगले 15 दिन बारिश नहीं होने वाली, किसान को अब पता है कि मुझे क्या करना है, सिंचाई है उसके पास तो वो सिंचाई करेगा, और सिंचाई नहीं तो क्या करेगा, मल्चिंग करेगा, जो नमी बची है सॉइल उसको बचाएगा अपने आप को, और प्लस इसलिए भी कौन सी लगाएगा जो कि ड्राउट रेजिलिएंट है। तो हमारे यहाँ पे निकरा एक प्रोजेक्ट है आईसीआर के अंदर, जिसके तहत में इस तरह की ड्राउट रेजिस्टेंट फसलें तैयार की गई हैं। तो वो तरह की वैरायटी किसानों उन क्षेत्रों में जो कि वर्षा आधारित खेती करते हैं, तो उनको वो वाली फसलें और वैरायटीज लगानी है। साथ साथ में पॉन्ड इरिगेशन है, तो जहां जहां सरकारों को लगता है कि यहां पॉन्ड्स थे, आप टोपो शीट से देखिए, जहां भर दिए मिट्टी से तो खुलवाइए, और यदि हैं तो उनकी कैपेसिटी बढ़ाइए, और इरिगेशन यदि कैनाल आप बनवा सकते हैं तो वो बनाइए। ये सब करते अर्ली वार्निंग सिस्टम, और जो मौसम विभाग जो आपको समय समय पे वार्निंग दे रहा है वो और सुदृढ़ होता जा रहा है। तो ये सब चीजें तो होंगी, अब ये हो गई, मगर कई बार ऐसा भी होता है मौसम तो खराब होगा
2: जी।
3: ऐसा नहीं है कि मौसम हमेशा अच्छा रहेगा और हमेशा ही ठीक रहेगा, तो वो खराब होगा तो ऐसे में क्या होगा, किसान की फसल खराब हो सकती है, तो क्रॉप इंश्योरेंस है उसके लिए। ये सब हम करेंगे, अर्ली वार्निंग भी है, एश्योर्ड इरिगेशन भी है, अच्छी वैरायटीज हैं, ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटी है, क्रॉप इंश्योरेंस है, ये सब है, और अच्छा प्राइस मिल रहा है उनको, सही फर्टिलाइजर, सही पेस्टिसाइड, सब चीजें मिलती हैं जो कि किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या जरूरत है, गुड गवर्नेंस की।
2: बिल्कुल,
3: तो हमें गवर्नेंस बढ़ाना होगा।
2: आनंद जी, अगर हमें लंबे समय तक जल सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो हमें जंगलों को बचाना होगा, जल ग्रहण क्षेत्रों को बचाना होगा, और भूजल स्रोतों को भी बचाना होगा, यानी कि नए जल स्रोत बनाना भी आवश्यक, और साथ ही पुराने प्राकृतिक जल तंत्र को पुनर्जीवित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण। और खासकर हमारे देश में तो नदियों को बड़े ही सम्मान की दृष्टि

0: जिसे देखा जाता है। एक दौर कहते हैं कि ऐसा भी रहा है जब हर गांव में तालाब वगैरह भी हुआ करते। तो आपको लगता है कि पुराने तालाब, झीलें और अन्य पारंपरिक जल स्रोत जो हमारे पास रहे हैं, उनका सही से अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो भी हमारे लिए काफी प्रभावी समाधान हो सकते हैं समस्याओं के लिए?
1: बिल्कुल, मैंने एक स्टडी भी की थी रिसर्च। यदि आप उत्तराखंड में और हिमाचल में पेड़ कटेंगे तो दिल्ली में ज्यादा फ्लड आएगा, यमुना में। सिमिलरली जम्मू कश्मीर ऊंचे पहाड़ों में आप कहते हैं पेड़ काटोगे तो श्रीनगर में फ्लड आएगा। तो ये जो फ्लड्स आपके हैं कैचमेंट एरिया के अंदर, यदि आपके जंगल अच्छे हैं सुनिश्चित, तो वो क्या कर रहे हैं, एक तो आपको फ्लड रोकेंगे आपका आना, दूसरा जो सॉयल इरोजन होता है उसको बचाएंगे, और तीसरा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे। तो इसलिए हमें जितने भी कैचमेंट एरियाज हैं उसमें जंगलों को बचाना है, बल्कि और बढ़ावा देना है। और जैसे आपने कहा कि हमारी नदियां जो हैं उनको हमारे यहाँ तो वर्शिप किया जाता है, चाहे वो गंगा हो, यमुना, सभी नदियों को, मगर एक तरफ तो हम वहां उनको वर्शिप कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस गंद भी उसमें डाल रहे हैं। तो गंद डालना बंद करना पड़ेगा हमें, अदरवाइज नदियों को अपने आप को साफ करना आता है। तो यदि वो करते हैं, उसमें जो एनक्रोचमेंट है नदियों के अंदर उसको हटा देते हैं, और जो तालाब है हमारे, आप देख लीजिए, बेंगलोर में एक समय में 1700 तालाब होते थे, दिल्ली में मेरे ख्याल 900 तालाब होते थे, मगर आप जाएंगे तो वो तालाब नहीं दिखेंगे आपको। तो वो तालाब आप टोपोशूट से ढूंढिए कहाँ कहाँ थे तालाब, और मुझे लग रहा है कहीं शहरों में ये शुरू हो चुका है, दिल्ली में भी मैं सुन रहा था, तो उन तालाबों को खोज रहे हैं और उनको जो यदि खराब हो चुके हैं तो उनको रिवाइव कर रहे हैं। तो ये सब रिवाइव करेंगे तो आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ेगा, तो आपको तालाब से पानी भी मिल जाएगा, आपको जब खेती के लिए भी मिलेगा, आपको ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। तो ये सब करने की जरूरत है बिल्कुल। और डेफिनेटली इसके साथ साथ जैसे मतलब वाटर हार्वेस्टिंग, यदि आप वाटर हार्वेस्टिंग भी करते हैं तो वो भी एक आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। और ये सब प्रयास जो है यदि हम उसको सही ढंग से और सही मंशा से करते हैं तो डेफिनेटली इट विल गो ए लॉन्ग वे। हमारी जो वाटर सिक्योरिटी है उसको तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। वाटर सिक्योरिटी होगी तो ही फूड सिक्योरिटी होगी आपकी, और पेड़ पौधे और वो भी बचेंगे, अन्य जानवर, तो बायोडाइवर्सिटी भी बचेगी आपकी, एनवायरमेंट सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें आपस में लिंक है। यदि हमें वाटर सिक्योरिटी को बचा लेते हैं तो फूड सिक्योरिटी को भी हम बचा लेंगे, एनवायरमेंट सिक्योरिटी को भी दुरुस्त कर लेंगे, और हमारे खासकर बायोडाइवर्सिटी को भी बचा लेंगे।
0: आनंद जी, सरकार की ये सोच रही है कि सूखे की जो स्थिति होती है उससे निपटने के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, और सरकार की योजनाओं में हम ये देखते भी हैं कि स्थानीय लोगों की सीधी भागीदारी को महत्व दिया जाता है। एक तरफ जहां सरकार जल संरक्षण को महत्व दे रही है, वनीकरण को बढ़ावा दे रही है, भूजल रिचार्ज पर भी बात हो रही है, तो दूसरी तरफ इमरजेंसी वाटर सप्लाई या फिर रोजगार जैसी राहत भी इसमें शामिल हो जाती है, कई सारी चीजें हैं। तो इनका संतुलन अगर बना करके हम देखें तो क्या लगता है कैसे परिस्थितियां बदल सकती हैं?
1: नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ध्यान रखिए कि चाहे हम किसी गांव में जा रहे हैं, पहाड़ पे कहीं जा रहे हैं, तो लोकल लोग जो हैं उनको तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना बड़ा जरूरी है। और वो पेड़ बचे हैं तो पहाड़ बचे हैं, यदि पेड़ नहीं बचेंगे तो पहाड़ नहीं बचेंगे। तो सबसे पहले हमेशा जरूरी है कि हमें ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं उनको तो कम्युनिटी को सुदृढ़ करना पड़ेगा, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी उनकी। और यदि हम ये कर पाते हैं तो नेचुरली हम काफी हद तक बहुत सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट कर लेंगे। हाँ, उसके साथ साथ ऐसी परिस्थिति हमेशा आती है नेचर में, जब कभी कभी बारिश कम हो जाएगी, जब नेचुरली सूखा पड़ेगा तो उस समय क्या होगा, आपको फॉडर की कमी हो जाएगी, पीने की पानी की समस्या आ सकती है। तो ऐसे में उस समय सरकारों को तैयार रहना है, चाहे आपको टैंकर से पानी प्रोवाइड करना है, जानवरों के लिए फॉडर उपलब्ध कराना है, तो वो आप कर सकते हैं। मगर हाँ, ध्यान रखना है, जैसे कि फॉरेस्ट है, पहले जब तक आम जनता का, वहां के जो किसान लोग थे या जंगल के आसपास रहते, उनको एक्सेस थी जंगल में जाने के लिए, तो उनको फॉडर की कभी कमी नहीं रहती थी। बाद में किस तरह के कुछ नियम ऐसे आए कि उनको जंगलों से दूर रख दिया गया, फिर बाद में फिर पहल हुई ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, नहीं आसपास के लोगों को भी इन्वॉल्व करना है, तो उनको जरूर इन्वॉल्व करके रखना पड़ेगा, जिससे कि उनको घास फोडर वगैरह ये मिलता रहे, जिससे कि वो अपने जानवर भी ठीक रख सके। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि फसल तो आपकी खराब हो गई, मगर यदि आपके पास जानवर है, उसको फोडर मिल रहा है, तो आपको चलो दूध दही मिल जाएगा, उससे आप सर्वाइव तो कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वो बहुत जरूरी है।
0: आनंद जी, सूखे का संकट किसी एक देश की सीमा तक सीमित नहीं, ऐसे में भारत जिस तरह से अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और अपने अनुभव दूसरे देशों के साथ साझा करने की बात कर रहा है, तो इससे एक मजबूत वैश्विक ड्रॉट रेजिलियंस नेटवर्क बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल, आपके सामने एग्जांपल है कि इस बार जो एलनीनो फिनोमेना है, अप्रैल के आसपास ही बोल दिया गया था कि भी एलनीनो इस बार आने वाला है, और हो सकता है कि सुपर एलनीनो हो, और इसकी जो मॉनिटरिंग है पूरे वर्ल्ड लेवल पे चल रही है, तो वो जो मॉनिटरिंग चल रही है, हमारे पास भी रिसर्च का जो डेटा आ रहा है, ऑब्जर्वेशन आ रहा है, तो हमारी भी तैयारी ऐसी है। और खासकर जो ये WMO जो है, वर्ल्ड मीटोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, FAO है, यूनाइटेड नेशंस है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है मिलजुल के काम करती है हैं और उनकी जो रिसर्च निकलती है, उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस निकलती हैं या कोई अर्ली वार्निंग है, वो सारे देशों में शेयर की जाती हैं। और जैसा कि बताया, एल नीनो हमें ही नहीं प्रभावित कर रहा है, वो पेरू को भी प्रभावित कर रहा है, वहां पे ज्यादा इस समय इफेक्ट दिख रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया को भी प्रभावित कर रहा है, वो इंडोनेशिया को भी प्रभावित कर रहा है। तो इसीलिए ये एक तंत्र बनाया गया है कि ऐसा एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बना दिया जाए जो WMO इस तरह से बना रहा है और वो बाकी कंट्रीज के साथ शेयर कर रहा है, जिससे कि हर कंट्री के पास यदि अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, हालांकि अभी बहुत

0: सारी ऐसी कंट्रीज डेवलपिंग है जिनके पास हर खतरे के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है। तो इस अर्ली वार्निंग सिस्टम को इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टी हजार अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना पड़ेगा और लोकल्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे पास हैं वो बाकी कंट्रीज के साथ शेयर करें, जो उनके पास है वो हम उनसे लें, और यदि हम ये सब करते हैं तो किसी भी खतरे से हम निपट सकते हैं। और आज मैंने जैसे बताया कि टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है, हमारे पास सैटेलाइट है, हमारे पास रडार है, हमारे पास ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन के हब्स हैं, कम्युनिकेशन लाइंस हैं, तो फटाफट जानकारी एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकती है कम्युनिटी के आखिरी लोगों तक। हाँ, ये सुनिश्चित करना है कि ये जो ये जानकारी है उसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूं तो क्रूशल माइल कनेक्टिविटी, कि कौन सा वाला एरिया है जहां पे अर्ली वार्निंग की जरूरत है, तो वहां तक उस कम्युनिकेशन के लिए आप चाहे कैसा भी करें, चाहे उसको टेलीविजन से, रेडियो से, यदि बिजली नहीं है तो कैसे करेंगे, तो आप कम्युनिटी रेडियो से कर सकते हैं। टोन अलर्ट हैंड वाइंडिंग रेडियो आ गए हैं जिसमें बिजली की जरूरत नहीं है, बैटरी की जरूरत नहीं है, आप उसको पीछे 100 वॉट वाइंड करिए, वो आप 1-1.5 घंटा चलेगा।
1: आनंद जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे और पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने कई बार पहाड़ी इलाकों का जिक्र किया, वहां से धाराएं निकलती हैं, और भूजल को बचाने के लिए भी मैदानी क्षेत्रों में कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति अगर सूखे की स्थिति से बचने के लिए प्रयास करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए?
0: देखिए, इसमें सबसे पहला काम तो ये है कि हमारे जो आसपास जो है, चाहे वो स्ट्रीम्स हैं, धाराएं हैं, नाले हैं, फ्लड स्टॉर्म जो ड्रेन्स होते हैं वो हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, इन सबको हमें कंजर्व करना है, बचा के रखना है, और उनकी जिसे कहते हैं ना, तो पहले एक सिस्टम था हमारे पास किस तरह के तालाब को बनाया जाना है और कैसे उसकी मेंटेनेंस होनी है, तो उसमें हमें लोकल लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। हर यदि क्षेत्र में हमारे पास तालाब हो तो आपका पानी उसमें भरा रहेगा, तो जब कभी वर्षा कम होगी तो तालाब से पानी यूज कर लिया आपने, चाहे वो पीने का पानी हो या फिर सिंचाई के लिए हो, और उसी से पानी से आपका ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। और नदियों को प्रदूषित ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि वही पानी हमें काम आता है और वो भी हमारा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। पूरी चीज आपस में कनेक्टेड है। यदि पहाड़ों को हम नष्ट करेंगे तो उसका प्रभाव प्लेन्स में पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है कि हमें प्रकृति को बचाना है, और यदि हम इसमें लोकल आदमी को इन्वॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है, क्योंकि उनको उससे लगाव है, उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है, लाइवलीहुड उसको उसी से मिलती है, वो उसको खराब नहीं करेगा, तो उसको इन्वॉल्व करना है उसके साथ।
1: आनंद जी, चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सूखे से निपटने के लिए भारत के दृष्टिकोण और विभिन्न प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। मंथन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्यों के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन संवर्धन करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीकी क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और एआई क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है। श्री गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बताते हुए कहा कि वर्ष 2032 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेंचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2 दिन की यात्रा पर कल पेंचिंग पहुंचे श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झिंग से भी मुलाकात की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने के विचार को सहमति दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर की शिक्षाएं नागरिकों को धार्मिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The Unified Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition as world's largest real-time payment system, with the system now operational across 11 countries. It has emerged as one of the most successful pillars of India's digital public infrastructure, providing an interoperable and real-time payments platform. The UPI, which was launched on this day in 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. The Finance Ministry said that the annual transaction volume increased from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. The transaction value also rose sharply from 7,000 crores rupees to nearly 314 lakh crore rupees during the same time period. Prime Minister Modi has hailed the decade-long success of the UPI service. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Calling upon the countrymen to share their UPI experience, the Prime Minister stated that the sheer scale and reach of UPI is something every Indian must be proud of. Defence Minister Rajnath Singh has approved transfer of DRDO-developed technologies of missile systems to the country's private defence industry to bolster

भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का आज 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। ये प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से लेनदेन की मात्रा से लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार वार्षिक लेनदेन की मात्रा 2016-17 में मात्र 1,78,00,000 थी, जो 2025-26 में बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गई है। इसी अवधि में लेनदेन का मूल्य भी 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 314,00,000 करोड़ हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके यूपीआई ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है, साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।

0: के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुँच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने भुगतान को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बना दिया है।
1: मुझे 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बंदे की बात, अगर वॉलेट में पैसे हो ना हो यूपीआई तो होता ही है, अपने यूपीआई मोबाइल से ये बेनिफिट मिला है।
0: बिहार निवासी सानू भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है।
2: एनपीसीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं।
0: महज एक दशक में ही यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
3: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। श्री डोभाल और श्री वांग यी दोनों सीमा वार्ता तंत्र के विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में करीब 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान तलाशने के लिए बनाया गया था। न्यूयॉर्क स्थित टाइम्स स्क्वायर पर प्रवासी भारतीय समुदाय की महिलाओं ने एक विशेष आयोजन में भारतीय साड़ियों के रंगों और विविध रूपों की कालजयी खूबसूरती, समृद्ध विरासत और भारत की सांस्कृतिक विविधता को गर्व के साथ पेश किया। टाइम्स स्क्वायर पर रविवार को साड़ी गोज ग्लोबल कार्यक्रम का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालत पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक संबंधों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को डेटा सेंटर्स के लिए एक बेहद आकर्षक और मजबूत गंतव्य के रूप में पेश किया है। उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए जापानी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है और देश को बड़े वैश्विक निवेशकों से 200 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। एक रिपोर्ट।
4: टोक्यो में जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री आकाजावा रियोसेई के साथ हुई बैठक में श्री गोयल ने कहा कि भारत जापान साझेदारी को चार मुख्य स्तंभों, व्यापार में वृद्धि, तकनीकी सहयोग को मजबूत करना, निवेश बढ़ाना और पर्यटन को बढ़ावा देने के आसपास केंद्रित किया जा सकता है। इससे पहले टोक्यो में सेमीकंडक्टर और एआई क्षेत्रों की जापान की कंपनियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने एक बड़े सुधार की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार एक ऐसे विशेष ढांचे पर काम कर रही है जिसके तहत भारत में उत्पादन इकाई लगाने वाली उच्च तकनीक कंपनियों को आवश्यक उपकरणों और कलपुर्जों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट दी जा सकेगी। उन्होंने बताया कि देश में सेमीकंडक्टर की मांग वर्ष 2032 तक 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने पिछले वर्ष 7.7% की विकास दर दर्ज की है और देश वर्ष 2047

0: तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
1: संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों पर हमले को तत्काल रोकने का आग्रह किया है। गुतेरेस ने सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने का आग्रह किया। इसमें समुद्री कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून शामिल हैं। इसके साथ ही काला सागर, होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर में नागरिक जहाजों, बुनियादी ढांचे और नागरिक नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी शामिल है। ब्रिटेन मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बताया कि ओमान के पास एक तेल टैंकर पर अज्ञात प्रक्षेपास्त्र से हमला किया गया और अन्य जहाजों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत मोरक्को साझेदारी को और अधिक मजबूत और गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सातवीं भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार प्रभारी राज्य सचिव उमर हेजीरा ने की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने अमेरिका की उप विदेश सचिव एलिसन हुकर के साथ भारत अमेरिका इंडियन ओशन स्ट्रेटेजिक वेंचर पहल को आगे बढ़ाने के लिए उपयोगी बातचीत की। ये पहल दोनों देशों के नेताओं ने पिछले वर्ष शुरू की थी। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी थी। भारतीय श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक अवसंरचना पर हमलों को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, This is Akashwani. I am R.S. Raghu with the World News. The headlines. UPI completes a decade making India a global leader in digital payments with world's largest real-time payment system. Prime Minister Narendra Modi hails the platform's remarkable reach and scale, terming it a matter of pride for every Indian. National Security Advisor Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi hold special representative talks in Beijing on boundary issues and improvement of ties. External Affairs Minister S. Jayshankar holds talks with his Russian counterpart Sergei Lavrov in Moscow on bilateral and global issues. UN Secretary General Antonio Guterres calls for immediate end to attacks on commercial shipping and civilian infrastructure. And in men's cricket, hosts Sri Lanka trail by 238 runs against India in first innings as rain forces early stumps on day 3 of Colombo Test. The Unified Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition as world's largest real-time payment system. With the system now operational across 11 countries, it has emerged as one of the most successful pillars of India's digital public infrastructure, providing an interoperable and real-time payment